0: क्या कुछ स्टोरी सुना रहा है, स्टार्टिंग से सुना रहा है। भाभी को घुमाने के लिए किधर ले गया?
1: अरे किधर मत पूछ, ये पूछ किस में ले गया, किस में?
0: किस में भाई?
1: अरे किसिंग कार में यार।
0: ए भाई साइड कार सुना, कलाकार सुना, बेकार सुना, डकार भी सुना, किसिंग कार क्या होता है?

आप भी रंग दे बसंती एंड लेट द बसंत गो ऑन. वी शैल सी यू और यू कैन हियर अस नेक्स्ट संडे आफ्टरनून 3 to 5 राइट हियर ऑन WRSU. जय हिंद.